0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: अब सैयदना सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु चले, हजरत उस्मान के पास आए, उन पे इस्लाम पेश किया, फअस्लमा उस्मान, हजरत उस्मान भी मुसलमान हो गए। फिर हजरत साद इब्न अबी वक्कास के पास आए, उन पे इस्लाम पेश किया, हजरत साद भी मुसलमान हो गए। अब्दुल रहमान इब्न औफ के पास आए, उन पे इस्लाम पेश किया, वो भी मुसलमान हो गए। हजरत तलहा के पास आए, उन पे इस्लाम पेश किया, वो भी मुसलमान हो गए। और इसी तरीके से अब यानी जो इस्लाम फैलना शुरू हुआ तो लोग सैयदना अबू बकर के हाथ पे इस्लाम ला रहे, और फिर फुकरा में से, ज़ोफा में से हजरत अम्मार, यासिर, समैया, सुहैब, खबाब, ये सब इस्लाम ले आए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, क्योंकि अब तो अल्लाह ने हुक्म दे दिया था ना कि अंजिर, अब तो लोगों को डराए, अब तो लोगों को दावत दें, अब तो आप लोगों को पैगाम इलाही पहुंचाएं और दावत तौहीद दें, और जो ना माने उनको अजाब जहन्नम से डराएं, क्योंकि नबी का तो वजीफा ही बशीर और नजीर होता है कि मानने वालों को बिशारत दे और इनकार करने वालों को डराए। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आपने एक दिन यह किया कि सुबह सुबह जो था जब अले अभी कुबैस पे चढ़ गए, आप तो जानते हैं ये मक्के का हजर असद के सामने जो पहाड़ है जिसपे अब महल्लात बने हैं, ये जब अले अभी कुबैस, और इस पहाड़ की भी अपनी शान है कि हाजा अव्वल जबल वज़िअ अल अर्ज, ये दुनिया के पहाड़ों में सबसे पहला पहाड़ है जो जमीन में रखा गया, बाकी पहाड़ सब बाद में रहे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल अबी कुबैस पे चढ़े, और अरबी जबान में उस जमाने में रिवाज था कि अगर सुबह के वक्त में या कोई खतरनाक बात कहनी हो, लोगों तक पहुंचानी हो, तो स्पीकर या मुवासलात के जराए तो नहीं थे, लोग ऊंची जगह पे खड़े हो जाते और कहते वाह सबाहा। अब हजूर ने दो तीन दफा जब आवाज लगाई, सारे मक्के वाले भागे, क्योंकि वो तो जानते थे कि अल्लाह का नबी है मोहम्मद रसूलुल्लाह। नबी नहीं मानते थे कि सादिक अमीन तो मानते थे कि सच्चा है, अमानत वाला है, दयानत वाला है, और जिसने 40 साल में कभी अपनी जबान मुबारक से गलत बात नहीं की, और वो कभी पहाड़ पर नहीं चढ़े, उन्होंने ऐसा तो कभी नहीं किया। सब के सब कुरैश दौड़े, बनू हाशिम दौड़े, बनू मखज़ूम दौड़े, सब दौड़े। आए तो क्या देखते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह पहाड़ पे खड़े हैं, और सारे करीब आ गए, और आपने फरमाया कि सरदारों, कुरैशियों, मक्के वालों, एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें यह खबर दूं कि इस पहाड़ के पीछे तुम्हारा दुश्मन जो है लश्कर लेके बैठा हुआ है और हमला करने वाला है, क्या तुम मेरी खबर को मान लोगे? तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल मान ले। यानी इतनी बड़ी अहम खबर कि अभी पहाड़ के पीछे दुश्मन फौजें लेके यहां तक पहुंच गया है, अभी बस चढ़ाई करेगा तुम पर, इतनी बड़ी खबर अगर मैं दूं तो मेरी खबर को मान लोगे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मान लेंगे, कैसे नहीं मानेंगे, मा जर्रबना का इल्ला सादिकन आदिला, हमने तो 40 साल में हजूर आपको सच्चा पाया, हमने तो आपको अदल वाला, इंसाफ वाला पाया है, कभी आपकी जबान मुबारक से हमने कोई झूठी बात सुनी नहीं, कैसे नहीं माने? तो हजूर ने फरमाया फिर सुनो, मैं तुम्हें एक कलमा सिखलाता हूं, अगर वो तुम मान लो ना, सिर्फ अरब तो अरब, अजम भी तुम्हारे गुलाम हो जाए। सिर्फ अरब नहीं, अरब तो मामूली सी बात, कद दान अदलकुमुल अजम, पूरा अजम तुम्हारे दरवाजों पे सरनगू हो जाएगा। निकालने बना या रसूल्ला, अल्ले बना या मोहम्मद, जल्दी करें बताएं, ऐसा कौन सी बात है, हम तो बिल्कुल मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अरबों को सरदारी का तो बड़ा शौक था ना मक्के वालों को। उन्होंने कहा इतनी बड़ी सरदारी के पूरा अजम भी हमारी क़यादत मान ले? हजूर ने कहा बिल्कुल। उन्होंने कहा हजूर फिर देर किस बात की है, मेहरबानी करो हमें जल्दी बताओ। आपने फरमाया अकूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, मक्के वालों फिर ये सब गैर अल्लाह को छोड़, پھر تمام آلیہ باطلہ کو دلوں سے نکال کے ایک واحد معبود کا اقرار کرو. اب جب حضور نے دعوت توحید دی اتنے گرم ہوئے کہ آپ کا بالکل حقیقی چچا ابی لہب جس کی کنیت تھی, نام اس کا ابی لہب نہیں تھا, ابی لہب کنیت تھی, نام اس کا عبد العزیٰ تھا, کیونکہ عرب میں یہ رواج ہوتا ہے ایک نام ہوتا ہے ایک کنیت ہوتی ہے اور ایک لقب, تو اس کا نام تو عبد العزیٰ تھا لیکن کنیت ابی لہب تھی. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابی لہب کنیت اس لیے رکھی گئی کہ اتنا خوبصورت آدمی تھا کہ اس کے رخسار ایسے جلتے تھے جیسے انگارے چمک رہے, اتنا سرخ. تو اس نے بدبخت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب سے پہلی جو گستاخی کی تو ابی لہب نے کی, کہا کہ تبن لکا لہذا جماعتنا, کہا لگا نعوذ باللہ ہلاکت ہو آپ کے لیے, آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں, ایک محاورہ ہے عرب کا تبن, تو اس نے کہا کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں نعوذ باللہ, آپ کے لیے اسی لیے ہمیں بلایا تھا, یہی ایک کلمہ ہمیں سنانا تھا, اسی لیے تم نے ساری برادری کو تکلیف دی اکٹھا کر لیا. اور یہ کہہ کر لوگوں نے کہا چلو چلو چھوڑو چھوڑو چھوڑو بس اس کی باتیں نہ سنو, اور لوگ چلے گئے. اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں اپنے مدنی پاک کی شان میں جو اس نے اہانت کی تھی ایسا بدلہ لیا دنیا میں بھی کہ قیامت تک اس پر لعنت برستی رہے. کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلا نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدہا حبل من مسد. تو اللہ نے قرآن پاک میں اتارا تو ابی لہب یہ کہہ کے آ گیا, لیکن اب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آنے کی سوچنی شروع کر دی کہ بھئی یہ تو روز توحید کی بات کر رہا ہے, کبھی سنتے ہیں حضرت عثمان مسلمان ہو گئے, کبھی سنتے ہیں عبد الرحمان ابن عوف مسلمان ہو گئے, کبھی ہم سنتے ہیں کہ طلحہ مسلمان ہو گئے, اب مقابلے پہ تم. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بڑا بدبخت ملعون ابی جہل جو اپنے آپ کو ابی الحکم کہلاتا تھا,

ईमान ले आया कि जी मैं तो मानता हूं एक पानी का गोता लगा, लेकिन अबू जहल इतना इतना शदीद है, इतना जालिम है कि गर्दन कटी हुई है, आखिरी रगे हैं, फिर भी कुफर से बाज नहीं आया और इस्लाम की मुखालफत करने से बाज नहीं आया। अब देखें कि उसने जुल्म और सितम की जो तरीका ईजाद किया है, आज पूरी तारीख आप उठा के देख लें, आज की तारीख में आप भी समझ नहीं सकेंगे कि अबी जहल से पहले भी किसी जालिम ने ऐसे सोचा होगा। बाद में तो लोगों ने बहुत सोचा, क्या कुछ नहीं हुआ कश्मीर में, क्या कुछ नहीं हुआ कोसुफू में, क्या कुछ नहीं हुआ सर्बिया में, क्या कुछ नहीं हुआ शीशान में मुसलमान बेटियों के साथ, खवातीन के साथ। अबू जहल ने दो ऊंट मंगवाए और ऊंटों को रस्से बांधे गए और रस्से बीबी सुमैया के पांव में बांधे गए, एक इस पांव में रस्सा बांधा गया, एक इस पांव में रस्सा। ये कभी आपका अकल सोच सकता है तहजीब का ये तरीका? और मुखालिफ सिमत में ऊंटों को खड़ा किया गया और उस जालिम ने कहा कि जब मैं हुक्म दूं तो दोनों ऊंटों को भगा दिया जाए, तो एक ऊंट इधर दौड़ेगा एक ऊंट इधर दौड़ेगा। अबू जहल सामने खड़ा है, जब ऊंटों को दौड़ाया तो खुद नेदा मारा बीबी समैया की शर्मगाह में और बीबी साहबा दो हिस्सों में चीर दी गई। ऑपरेशन नहीं, छुरी से नहीं काटा गया, तलवार से नहीं काटा गया, ऊंटों ने ताकत से चीर, जैसे मुर्गी को पकड़ के आप यूं चीर। लेकिन उस वक्त भी उसकी जबान पे था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये अव्वल शहीदतिन फिल इस्लाम, इस्लाम की सबसे पहली शहीदा है जो इस्लाम के रस्ते में शहीद। यानी तहजीब की कोई हद है? हजरत खब्बाब इब्न अल अरद रजी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन बैठे थे, सहाबा ने कहा कि हजरत खब्बाब हमें अपने इब्तदाए इस्लाम की भी कोई बात सुना। हजरत खब्बाब इब्न अल अरद ने बताया क्या किया, आपने फराफा सौबहू अन ज़हरिही, आपने अपनी पुश्त से कपड़ा उठा लिया। कहा पुश्त से क्या पूछते हो, मेरी पुश्त देख लो, मेरी पुश्त पे पूरी इब्तदाए इस्लाम की तारीख लिखी हुई है। सहाबा कहते हैं जब हमने आपकी पुश्त को देखा तो उसमें ऐसे गड़े पड़ चुके थे, ऐसे गड़े पड़ चुके थे ऊपर से लेकर नीचे तक, ऐसे जैसे गड़े होते हैं और पूरे अंदर तक गड़े पड़े हुए और सियाह। हत्ता के हजरत उमर जैसा आदमी, हजरत अमीर अल मोमिनीन उमर जैसे आदमी कहते हैं कि मुझसे सब्र न हो सका, मैं रो पड़ा।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: और सारी दुनिया सीधी बात है कि वो बुराई की तरफ जाएगी, तकरीर सुनने के लिए कौन आएगा। तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी है कि मैंने आपको तकलीफ भी दी और कुछ लोग भी नहीं आएंगे। बस यही है कि आप इशा की नमाज वहां मस्जिद में पढ़ा दें और उसके बाद दुआ फरमा दें, बस। आप तो तशरीफ ले आए, आपकी बड़ी मेहरबानी। लेकिन जब आदमी ही कोई ना हो तो बंदा आखिर तकरीर किसको करे, और मस्जिद में वो दो चार आदमी जो होंगे वो तो पहले से आपके मुतकरीन में है, हमेशा दर्द सुनते हैं, तकरीरें सुनते हैं। बस हम कहा ठीक, मस्जिद में तशरीफ ले गए, इशा की नमाज पढ़ी। तो बाकी ठीक सी बात थी कि वहां यानी ज्यादा से ज्यादा 10 आदमियों के बजाय 20 आदमी हो गए। जब सलाम फेर के सुन्नतें वगैरह पढ़नी और दुआ का वक्त आया तो वाले साहब खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि देखो भाई, 10 हूं या 20 हूं, आप आए तो हैं, अल्लाह के नबी तो एक एक आदमी को जाके कुरान सुनाते थे, मेरे सामने तो कम से कम 20 आदमी बैठे हैं। तो अल्लाह ने वाले साहब को बड़ी आवाज दी थी माशाल्लाह। तो उन्होंने जब कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया तो एक गाने वाली जो थी वो गा रही थी, तो उसके कान में आवाज पड़ी। तो उसने लोगों से पूछा कि ये क्या आवाज है। उन्होंने कहा एक आलिम है और वहां भी तकरीर है, मौली शौली मुल्ला शुल्ला किस्म का आदमी है, कुरान पढ़ा है। उसने कहा कि मैं तो कुरान का मुकाबला नहीं कर सकती, आप लोग जहन्नम जा सकते हैं, मैं तो अल्लाह के कुरान का मुकाबला नहीं। और उसने कहा कि देखे नहीं, मुझे पैसे दें या न, गाना बंद, जब तक अल्लाह का कुरान पढ़ा जाएगा और तकरीर होगी मैं नहीं गाऊं किसी भी शक्ल। अल्लाह के कुरान के मुकाबले पे शैतान का काम। और उसके बाद फिर वो बाकायदा वहां से मजलिस छोड़ के चादर एक डाल के जहां वाले साहब तकलीफ फरमा रहे थे वहां आई और तब सारा मजमा लौट आया, क्योंकि वो गाना वाना तो बंद हो गया। तो वहां आके उसने रिक्वेस्ट की कि जी मैं पीछे बैठ के कुरान सुन सकती हूं। कहा कि हाँ सुने, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अल्लाह का कुरान जब पढ़ा जाए आदमी कितना खराब क्यों ना हो, आखिर इंसान है। ये अल्लाह के कुरान की तासीर है कि मकनातीसुन लिलकुलूब, अल्लाह ने जैसे काबे को बनाया है ना दिलों का मकनातीस, इसी तरह कुरान दिलों को बदलने वाला। शर्त यह है कि जरा आप कुरान को मोहब्बत से और इखलास से पढ़ें, एक रस्म समझ के ना पढ़ें। जैसे बहुत सारे मुल्क हैं उनमें कुरान मौजूद, और इतनी में पढ़ रहा एक अजाब में पढ़ रहा था कि हॉलैंड के एक इलाके में जब

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया।

कभी कुछ हो जाए लेकिन मैं ये पहुंचाऊंगा बनी अब्दुल्ला बनी हाशिम को और बनी अब्दुल मुत्तलिब को, रिश्तेदारी। तो जब वो हकीम इब्न हिजाम आया मक्का के करीब, तभी जहां रास्ते में मिल गया बदबख्त, उसने कहा इला आई नहीं अभी हकीम इब्न हिजाम, फकाला हाजा शानी, कहा जा रहे थे, कहा मेरी मर्जी, वो झूठ भी तो नहीं बोलना चाहता था। उसने कहा हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम ये बनी हाशिम की मदद के लिए जा रहे हो, तुम्हारी रिश्तेदारी है ना बनी अब्दुल मुत्तलिब के साथ, तो आज तुम्हारा दिल भी पसीज गया। उसने कहा छोड़ो मैं जहां भी जा रहा हूं मेरी मर्जी। उसने कहा कि नहीं ये नहीं हो सकता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता कि तुम जाके मेरे दुश्मनों को खाने पहुंचाओ। जा अबिल बख्तरी, अबिल बख्तरी नामी एक शख्स था, वो भी आ गया, वो भी सरदारों में से था। उसने कहा क्या बात है हकीम, निजाम ने कहा कि देखो मैं जा रहा हूं और ये अभी जाल कहता है कहां जा रहे, मैंने कहा मेरी मर्जी में जहां जाऊं। तो उसने कहा अभी जाल से, उसने कहा अभी जाल की बात है, हकीम इब्न हिजाम कोई आम आदमी है, वो भी तो सरदार है, क्या तुम हर आदमी के गले में लग रहे हो, तो वो हुर है आजाद है उसकी मर्जी जहां जाए। उन्होंने कहा नहीं ये तो मेरे दुश्मनों को खाने खुराक पहुंचाने के लिए जा रहा है और हमने तो उनका हिसार किया हुआ है, इक्तसादी बाइकॉट किया हुआ है उनके साथ, और हम उनको तकलीफ देना चाहते हैं, अगर उनको खुराक पहुंचती रहे तो तकलीफ तो खत्म हो गई। लेकिन अबिल बख्तरी ने कहा, उसने कहा अभी जल हट जाओ, अभी जल का नहीं हटूंगा। तो अबिल बख्तरी ने मारा अभी जहल को, अभी जहल वहां से शर्मिंदा होकर उसने कहा तुम कौन हो कि हर सरदार का रास्ता रोकते हो, अगर ये है तो फिर मैं भी इसके साथ। इतने वाकयात के बावजूद भी लेकिन सवाल है कि जी वो खाना कहां पूरा हो, हत्ता के ऐसा वक्त भी आ गया है कि उस मुहासरे के दौरान एक शख्स जो बनी अब्दुल मुत्तलिब से ताल्लुक रखता है, वो कहता है कि मैं रात को गया, एक मुर्दा ऊंट पड़ा हुआ था, तो उसका सब कुछ अंदर से तो खाया जा चुका था, सिर्फ उसकी खाल पड़ी हुई थी, तो मैं खाल उठा के लाया, उसको हमने धोया, धोने के बाद उसको हम पका पका के खाते रहे कि और कोई चीज ही नहीं। आज तो हम घर में बैठ के अल्लाह की 10-10 नेमतें खाते हैं और अल्लाह का शुक्र नहीं करते, देखे कि अल्लाह के नबी हैं। और उनका जुर्म क्या है कि अतक्तुलून रजुलन अन यकूल रब्बी अल्लाह, कि क्या तुम ऐसा आदमी को कत्ल करना चाहते हो, जुर्म क्या है कि वो यही कहता है कि अल्लाह एक है, बस ये जुर्म, भाई तुम इस्लाम नहीं लाना चाहते ना लाओ। यही काफिरों की उल्टी मंतिक है, यही वो काफिरों की इब्तदाए आफरीन से लेकर आज तक उल्टी मंतिक है कि अगर खुद कोई बात करें तो कहते हैं जी ये तो हुर्रियत है, इंसानी हकूक की बात है, यार इंसान के हकूक हैं, लेकिन क्या वो हकूक मुसलमानों के नहीं है, क्या मुसलमान इंसान नहीं है। अगर हुकूक इंसानी के तुम इतने बड़े अलमबरदार हो तो जहां 50-50 लाख मुसलमान शहीद होता है वहां तुम्हें हुकूक इंसानी नजर नहीं आता। यही हाल उस वक्त भी था कि अबू जहल और तमाम काफिर अबी लहब, उतबा, उतैबा, शैबा, रबिया, वलीद इब्न अल-मुगीरा, आदाए इस्लाम, उनके घरों में तो खाने पक रहे हैं, और बनू अब्दुल मुत्तलिब के घर में, अबी तालिब के घर में, बनी हाशिम के घर में, सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में फाका। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि जिस आलिम की तकरीर पर या जिस जमात की तहरीक पर, तंजीम पर, काम पर कोई मुखालिफ ना हूं, सब राजी हूं, तो समझ लो कि वो हक की जमात नहीं, क्योंकि अगर सब राजी होते तो फिर तो हजूर पे राजी होते, हजूर से बड़ी शान किसकी है, सब राजी होते तो फिर तो सहाबा पे राजी होते। सब राजी होने का माना यह है कि वो मौलवी कभी हक का कलमा नहीं कहता, बल्कि वो हर लोगों को खुश करता रहता है। मुहर्रम आया तो शहादत हुसैन पढ़ दी, 11वीं का दिन आया तो 11वीं शरीफ की फजीलत बयान कर दी, कोई उर्स शरीफ का मकाम आया तो हजरत मुइनुद्दीन अजमेरी की करामातें सुना दी, कोई हजरत महबूब गिलानी को मानने वाले लोग ज्यादा आ गए तो हजरत गिलानी के फजाइल बयान कर दिए, और देखा कि माशाल्लाह कुछ लोग इस किस्म के भी आए हैं, तादा मक्का से हो गया है, इन पर कुछ तौहीद का थोड़ा थोड़ा असर है, तो एक आधी तकरीर तौहीद पे भी कर दी ताकि सब खुश रहें, सब राजी रहें। तो सिर्फ इस किस्म के लोग मुदायन होते हैं, अल्लाह के दीन को सही बयान नहीं करते, वरना हक बात बयान जब आप करेंगे, अगर 10 आदमी

बीबी मरियम ने कहा, क्या कहते हो आने वाले, मुझे कैसे बच्चा होगा, मुझे तो आज तक किसी इंसान ने छुआ भी नहीं। ये है सिफत, ये है इफ्फत, ये है कमाल। याद रखो मेरे अजीज कि औरत का हुस्न जमाल जो है उसकी इफ्फत व हया। जब औरत का हया चला जाए वो हुस्न नहीं बाकी रहता, वो जमाल नहीं बाकी रहता, वो कमाल नहीं बाकी रहता, वो मासूमियत नहीं बाकी रहती। असल जो औरत के लिए अल्लाह ने ब्यूटी बनाई है ना, वो उसकी इज्जत है, उसका असमत है। कि अब देखें कि सबसे पहली बात जो बीवी मरियम कहती है, जिब्रील से मुखातब है, कहती है क्या कर रहे हो, लम यम सजनी बशरन, मुझे तो किसी बंदे ने हाथ तक नहीं लगाया। और अल्लाह ने जो बीबी मरियम की कुरान में तारीफ की है, अल्लाह ने जो कुरान में बीबी मरियम की सिफत बयान की है ना, आप सूरत तहरीम उठा के देखें तो क्या है, वह मरियम अबनत इमरान अल्लदी अहसनत फरजहा फनफखना फीहि मिन रूहिना। अल्लाह फरमाते हैं कि बीबी मरियम इमरान की बेटी जिसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की, यानी सबसे बड़ी वस्फ जो अल्लाह ने, ये नहीं कहा कि वो खूबसूरत थी, ये नहीं कहा वो पढ़ी लिखी थी, ये नहीं कहा कि बड़ी रोजे रखने वाली थी, बल्कि कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि उसने अपने नफ्स की हिफाजत की थी। कि जिना तो जिना, किसी के साथ निकाह भी नहीं हुआ था, उसे तो किसी गैर मर्द ने हाथ तक नहीं लगाया। इसी तरह अल्लाह पाक ने जो कुरान में फरमाया है, आप देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाते हैं कि हमने बहूरुन इन का अम्साल लुलुल मकनून। अल्लाह फरमाते हैं हमने जन्नत में जो हूरें रखी हैं बड़ी बड़ी आंखों वालियां, और ऐसे हैं जैसे मोती सदफ में छुपा होता है जिसको किसी ने हाथ ना लगाया हो। और आगे कुरान फिर बस बयान करता है कि लम यतमिसुन इंसुन कबलहुम बला जान, कि वो हूरें ऐसी पाक होंगी कि मेरे जन्नत वाले शख्स जिसको वो मिलेंगी उससे पहले किसी इंसान तो इंसान किसी जिन ने भी उनको हाथ नहीं लगाया होगा। असल सिफत तो औरत की ये है कि वो माँ और बाप के घर के बाद उसके बदन को हाथ लगे तो फिर शौहर। ये थी इफ्फत व असमत औरत। इसीलिए यानी सैयदा फातिमत ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वसीयत फरमाई थी कि सैयदना अली से कि मेरा जनाजा रात को पढ़ दें। सैयदना अली ने फरमाया भी कि फातिमा क्या कर रही हो, तुम बिनते रसूल पाक हो, तुम जिगर गोशा है मोहम्मद मुस्तफा हो, और तुम्हारा जनाजा हम रात को अजनबियों की तरह चुपके से पढ़ दें और दफन कर दें। फरमाया अली मेरी जिंदगी में मुझ पे किसी की नजर नहीं पड़ी, मैं चाहती हूं मेरे जनाजे पर भी कम से कम नजर। उन्होंने फरमाया कि फातिमा क्या कह रही हो, जनाजे में कोई क्या देख लेगा, आदमी पर चादर है बंधा हुआ है, जनाजे में क्या देखा। उसने कहा कम अज कम लोग ये तो अंदाजा कर लेंगे ना कि कद लंबा है।

जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा बीबी मरियम गुस्से में आने की जरूरत नहीं है, ये तो तेरे रब का फैसला है और तेरे अल्लाह को बगैर तेरी शादी के बगैर किसी चीज के बच्चा पैदा करना मुश्किल नहीं, बड़ा आसान है। और अल्लाह तो चाहते हैं कि उसको एक निशानी बनाए अपनी कुदरत की कि कोई ये ना कहे कि अल्लाह बना तो सकता है लेकिन जब तक मियां बीवी ना हूं वो भी नहीं बना सकता। अल्लाह चाहते हैं कि मैं अपनी कुदरत के तमाम नमूने दिखा दूं, मैं चाहूं तो नूर से मलाइका पैदा कर दूं, मैं चाहूं तो नार से जिन पैदा कर दूं, मैं चाहूं तो मिट्टी से आदम पैदा कर दूं, मैं चाहूं तो आदम से हव्वा पैदा कर दूं, मैं चाहूं तो मरियम से ईसा पैदा कर दूं, यखलुक मा यशा, मेरी मर्जी में जो चाहूं जैसे चाहूं। यही तो उसकी शान। अच्छा जी, उन्होंने कहा कमाल है तो ठीक है। और न कहा बीबी तुम बात कहो ना कहो, का ना अमरम मकजिया, ये तो अल्लाह की तकदीर का फैसला हो चुका है, अब वो तब्दील थोड़ा होता है। अब जनाब यानी हमल भी हो गया, बदो हमल भी हो गई, अब बच्ची बेचारी बैठी रो

रो रही है फिर भी, हालांकि जिब्रील बातें करके गए, कहती हाय काश मैं तो पैदा ही ना हुई होती, कम से कम चलो ठीक है मैं बेगुनाह हूं, मेरा दामन साफ है, लेकिन कौम तो नहीं जानती हूं। जिब्रील की बात हुई तो मेरे साथ हुई है, पूरी बिरादरी के साथ तो नहीं हुई ना, बिरादरी मुझे जब आएगी तो मैं कैसे मुकाबला करूंगी। अल्लाह ने फरमाया तुम्हें मुकाबले की जरूरत नहीं है, जब कौम सामने आ जाए तुम चुप करके सिर्फ ईसा की तरफ इशारा कर दो, हम जाने हमारा ईसा अलैहिस्सलाम जाने। कौम आ गई गुस्से में भरी हुई है, कहती या उख्ता हारून मा कान अबूक इम्रा सौइन वमा कानत उम्मुकी बगिया। के भाई हारून की बहन, बाद लोगों ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम के जो भाई थे हारून उनकी बहन, ये मुराद नहीं है, बल्कि मुराद ये है कि कान रजुलन सालिहन, उस इलाके में एक बहुत बड़े आबिद गुजार थे, उनका नाम हारून था जिसकी तरफ निस्बत की गई। उनने कहा तेरा बाप अच्छा, तेरी माँ अच्छी, ये क्या फा आशा।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिरादरानी इस्लाम, मोहतरम भाइयों, अजीज नौजवानों, सीरत पाक के सिलसिले में कुछ अरसे से ये सिलसिला दुरूस जारी है और हमने सीरत मुबारका के कुछ हिस्से, कुछ अहवाल, कुछ हालात पढ़े, बयान किए और सुने। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मक्का की सरजमीन तंग हो गई तो आप ताइफ तशरीफ ले गए, ताइफ वालों ने भी इस्तकबाल के बजाय बड़ा शदीद रद्द अमल जाहिर किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक को जख्मी किया। सुफहाए ताइफ ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आवाजें कसे, आपके पांव मुबारक खून से भर गए। उसी आलम में फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस सरजमीन हरम मक्का मुकर्रमा को लौटे तो आपके लिए ये दिन जो थे बड़े शदीद हुमूम और गुमूम के दिन। एक तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह परेशानियों का और दुखों का आलम था, आमुल हुज़्न था। मुआविनीन वफात कर गए, मुसाहिदीन के पास इतनी कुव्वत और ताकत नहीं कि वह दुश्मनों का मुकाबला कर सकें और अल्लाह के नबी अल्लाह की दावत के लिए हर वक्त बेचैन हैं। अल्लाह की कुदरत अपने फैसले फरमा रही थी कि अल्लाह ने एक फैसला फरमाया कि अपने नबी के लिए इसरा और मेराज, ताकि एक तो हुजूर की शान में और ज्यादा बुलंदी हो, दूसरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्मीनान कल्ब हासिल हो और आपके गमों का बदावा हो और पूरे आलम पर ये चीजें जो हैं जब आश्कारा होंगी तो फिर उन्हें शाने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म होगा। और साथ एक गुना तसल्ली थी कि मेरा मदनी, सिर्फ मक्का और ताइफ से आप घबरा रहे हैं कि ये आपका साथ नहीं दे रहे, हम तो पूरी दुनिया को, आसमानों को भी आपके मुसख़र करने वाले हैं, ये तो छोटे से शहर है। तो अल्लाह की तकदीर है आपके इसरा और मेराज का फैसला। अब ये बात याद रखें कि आमतौर पर हमारे यहाँ इंडो पाक में लफ्ज़ मेराज ही ज्यादा इस्तेमाल होता है, हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह सफर मुबारक जो है इसके दो हिस्से, एक हिस्सा जो है वो इसरा है और एक हिस्सा मुबारक जो है वो मेराज। इसरा का माना होता है सैर, और खास तौर पर वो सैर जो रात के किसी हिस्से में की जाए उसको कहते हैं इसरा। क्योंकि अरब में मुहावरात, अरब में कुछ कलिमात ऐसे होते हैं जो किसी खास वक्त के साथ ताल्लुक रखते हैं, वरना सैर का लफ्ज तो सैर है, लेकिन जब अरबी में इसरा का लफ्ज सैर के माने में, माना यह होता है कि रात की तारीकी में या रात के किसी हिस्से में जो सफर किया जाए उस पर सैर का इतलाक। इसी तरह पूरे कुरान मुकद्दस में आप नजर डालेंगे तो जहां जहां आपको लफ्ज इसरा मिलेगा, जैसे यहां पर मैं असरा

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: तो उन्होंने एक बात का अफसाना कर, भाई अगर काबे के अंदर पैदा होना दलील खिलाफत है तो काबे के अंदर तो मोहम्मद मुस्तफा भी पैदा नहीं हुए, फिर वो नबी कैसे बन गए? ये क्या बात हुई? ये कोई दलील है कि जो काबे के अंदर पैदा हो जाए सिर्फ वही खलीफा बन सकता है? तो नबुव्वत तो खिलाफत से बदरजा आला चीज है, तो फिर अल्लाह के नबी तो काबे के अंदर पैदा नहीं हुए, वो कैसे नबी बन गए? तो असल वजह क्या थी कि किताबों में तो इतनी लफ्ज था कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की विलादत खाना काबा में हुई। अब उसका तर्जमा इन्होंने ये किया कि काबा शरीफ के अंदर हुई, हालांकि मुराद ये था कि हद्दे हरम में हुई। अब उसी को आप देखें कुरान में कि अगर हजूर बीबी उम्मे हानी के घर में थे तो वो भी हरम मस्जिद अल हराम, अगर हुजूर हतीम में थे वो भी मस्जिद अल हराम, अगर हुजूर जमजम के कुएं के पास थे वो भी मस्जिद अल हराम। कुरान ने तो एक लफ्ज बोल के सारे अकवाल को जमा कर दिया कि ज्यादा बहस की तुम्हें क्या जरूरत है, हुजूर हरम में थे बस मस्जिद अल हराम में थे, बैत उम्मे हानी में हूं तब भी मस्जिद अल हराम है, दार अरकम में हूं तब भी मस्जिद अल हराम है, इन द बेरे जमजम हूं।

0: मुझे प्यास जो लगी तो मेरे सामने तीन बर्तन पेश किए गए, एक में पानी था, एक में शराब थी और एक में दूध था। और कहा गया कि हुजूर इन तीन में से जो आपको पसंद हो आप इख्तियार फरमा लें, आप चुन लें, आपके लिए सब ठीक। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फख्तरतु लबना, मैंने तो दूध को इख्तियार किया, मैंने कहा मुझे तो दूध दे। तो जिब्रील अलैहि सलाम बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा सबतल फितरत या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर मुबारक हो, आपने तो बिल्कुल ऐन फितरत पे जो हक चीज है वो चुनी है। अगर आप शराब ले लेते रगवत उम्मतों का आपकी उम्मत गुमराह हो जाती, और अगर आप पानी पसंद करते तो आपकी उम्मत पानी में गर्क हो जाती, और आपने दूध पसंद किया है क्योंकि दूध ही तो एक ऐसी चीज है जो अल्लाह ने बंदे के लिए खुद गिदा बनाई, यही तो चीज फितरत है। जैसे हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है उसकी गिजाए फितरत जो है वो दूध है, कि मां के बदन से उसे दूध मिलता है और कोई चीज नहीं मिलती। अगर उससे कोई दुनिया में गिजा और अच्छी होती तो अल्लाह और अच्छी दे दे, दे। अल्लाह के आगे क्या मुश्किल है। जो अल्लाह तबारक व ताला एक औरत के सीने में दूध पैदा कर सकते हैं, एक औरत की छातियों में दूध की नहरें बहा सकते हैं, और वहां देखें वो सिस्टम कितना रखा हुआ है, फिल्टर कैसा होता है कि दुनिया की लाख मशीनरी फिल्टर करे इतना साफ नहीं हो सकता जितना अल्लाह बच्चे के लिए खुद निजाम बनाया हुआ। तो आपने वो बर्तन ले लिया और उसके बाद कहते हैं जिब्रील अलैहि सलाम मुझे लेकर मस्जिद अक्सा की तरफ दाखिल हुए, और मस्जिद अक्सा मैंने देखा कि वो तो भरी हुई। और बाद रिवायात में यह भी आया है कि वहां अजान दी गई, और वही अजान है जो आज मुसलमान दे रहे हैं। ये अजान दरअसल इसरा के जमाने में मस्जिद अक्सा में दी गई और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, ताकि हुजूर को इस अजान की तालीम दी जाए और आप अपने सहाबा को तालीम दी जा सके। तो ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह फरमाते सदका अब्दी, मेरे बंदे ने सच कहा, सबसे बड़ा मैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, काल सदका अब्दी ला माबूद गैरी, मेरे बंदे ने सच कहा मेरे सिवा कोई ना, अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, काल सदका अब्दी अना इस्तफैतुहु अना अख्तरतुहु अना अरसलतुहु। अल्लाह ने फरमाया बिल्कुल मेरा बंदा सच कह रहा है, बाकी इसको तुम मैंने चुन लिया, मैंने नबी बना के भेजा है। अब उसने कहा हैया अलस्सलाह, आपने फरमाया सदा का अब्दी, अल्लाह फरमाते मेरे बंदे ने सच कहा, हर रज़ा इबादी, मेरे बंदों को जगा रहा है, बुला रहा है कि जल्दी अल्लाह की इबादत की तरफ पहुंचो। तो बाज़ उलमा ने लिखा है कि ये अजान उस वक्त भी हुई, और फिर मदीने मुनव्वरा में एक सहाबी ने ख्वाब में भी देखा, और उसको भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि पहले सुन चुके थे और फिर सहाबी का ख्वाब था, फअस्बतहू रसूलुल्लाह, हुज़ूर ने फिर उसी को साबित कर दिया कि अब यही अजान रहेगी क़यामत तक। तो अजान हुई और उसके बाद हजूर फरमाते हैं मैंने देखा कि मस्जिद भरी हुई है। मसाल तो जिब्रील का मन रहा उला, ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा हजूर आपको नहीं पता कि आपके इस्तकबाल के लिए अल्लाह ने आदम से लेकर ईसा अलैहि सलाम तक तमाम पैगंबर खड़े। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अब हम सोच में हैं कि अजान हो गई, नमाज हो गई, आज देखें, और हर पैगंबर सोच में है कि आज मकाम इमामत किसे नसीब होता है। जब नमाज का जब वक्त करीब आया तो हजरत जिब्रील ने फरमाया सिर तो मशरिकन व मगरिबा, मैंने मशरिक मगरिब शिमाल जुनूब आसमान जमीन फिर के सारा देख लिया है, माराईतु मिसला मुहम्मदिन, मैंने मदनी के शान के मुताबिक किसी की शान नहीं पाई, फतकद्दम या मुहम्मद, हजूर आप आगे बढ़े क्योंकि आप सबसे अशरफ सबसे अफजल सबसे आला हैं, आज इमामुल अंबिया का शरफ आपको मिलेगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने वहां नमाज पढ़ाई, और उसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सब अंबिया भी चले गए, सुम्मा अखदनी जिब्रील फाता इंद सखरते, फिर मुझे जिब्रील लेके उस सखरा के पास आए जिस पे अल्लाह ने उस सीढ़ी को रखा जहां से मेरा मेराज शुरू हुआ। अल्लाह ताला आलम व इल्मुहु अतम।
1: FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिरादरान इस्लाम, मोहतरम भाइयों, दोस्तों, अजीज नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व ताला के फजल से इस आजिज को सीरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरत सरकार दो आलम रहमत दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान करने की और आपको सुनने की अल्लाह ने सआदत बख्शी। जैसा कि किसी ने क्या खूब बात कही है कि जिक्र हबीब भी कम नहीं वसले हबीब, तो हमें वो जियारत का मकाम तो न मिल सका लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जो है वो भी कोई कम बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सीरत के मामले में हमने जमाने जाहिलियत से लेकर आपकी विलादत, रजात, शबाब, तजवीज, बेसत, फिर मुआरजा कुफारा कुरैश, ताजीब मुस्लिमीन और उसके बाद इसरा व मेराज तक अपने दुरूस को पहुंचाया। और आज हम इंशाअल्लाह जिस दर्स में बात कर रहे हैं उसका ताल्लुक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के बाद हिजरत के जमाने, मेराज के बाद, इसरा व मेराज के बाद एक अजीम वाकया हुआ मक्के में कि एक कबीला दौस, एक बहुत बड़ा कबीला था, उस कबीले का एक सरदार था अम्र इब्ने तुफैल, या बाद रिवायत में उसका नाम बिल अक्स है तुफैल इब्ने अम्र। वो मक्के में आए क्योंकि वो एक कौम के एक कबीले के सरदार थे, तो मक्के के भी सरदार लोग जो थे, रोसा जो थे, एक दूसरे का एहतराम, एक दूसरे का इकराम करते थे। तो जब उसको मिले तो उनने कहा कि देखो तुम एक बहुत बड़े कबीले के सरदार हो लेकिन आजकल हम एक बहुत बड़ी मुश्किल से दो चार हैं कि हमारे यहाँ एक शख्सियत ने अल्लाह के नबी होने का दावा किया है तो हम में से, और उसकी बातें भी बड़ी अजीब हैं और उसकी जबान में कुछ ऐसे असरात हैं कि जो बंदा भी उसके करीब जाता है, उसकी बात सुनता है, उसकी कलाम सुनता है, तो नतीजा ये निकलता है कि वो अपने माँ बाप को, बीवी बच्चों को, खानदान को भी छोड़, हत्ता के बाप दादे के दीन को भी छोड़। तो लिहाजा तुम मक्के मकर्रमा में जितना दिन तुमने रहना है बड़े शौक से क्याम करो, इबादत करो, तवाफ करो, उमरे करो, लेकिन तुम

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिरादरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गो, दोस्तों, भाइयों, अजीज नौजवानों, सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़मन में हमारे दर्स की इंतहा तकरीबन इस बात पे थी कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदिना सिद्दीक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के साथ गारे सौर में, जो मक्के के जानिब असफल में वाक़े है, क्योंकि मक्का के दो तरफ हैं, एक जानिब आला है और एक असफल है। जानिब आला यूं समझे जिसे आप जन्नतुल मुअल्ला कहते हैं, इस तरफ कब्रिस्तान है, ये आला है, और इसी तरह मोहल्ला मिसफला मिसयाल शार इब्राहिम अल खलील इला शार अल हिजरा शार सब मिसयाल मिसफला असफल का हिस्सा है, ये जानिब आला है और ये असफल। इसी तरह ये जो आपके यहाँ अब भी मक्के में कुदई मारूफ है, ये असल में दो है, एक कुदई है एक कुदा है। कुदा जो है वो जानिब आला में है और कुदई जो है वो जानिब असल। और जरा इंसान थोड़ा सा तदब्बर से तफक्कुर से गौर करे तो अल्लाह ने हजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ऐसी शान अता फरमाई थी, ऐसी अजमत अता फरमाई थी कि हर लिहाज से, यानी जहां जहां से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे हैं अल्लाह ने उस जगह को भी आबाद जरूर फरमाया, वरना कोई तस्वर भी नहीं था कि कभी ये रास्ते भी आबाद होंगे। आज वहां देखें मुखत्त हैं, दारुल हिजरा है, हैयल हिजरा है, आबादियां हैं, और जिस रास्ते से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर फरमाया था तरीक अल हिजरा, और उस रास्ते पर आबादियां, तो जहां से भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसीलिए उलमा ने कहा है कि हजूर जाहिरी तौर पर या मानवी तौर पर जहां से भी गुजरे हैं वहां अल्लाह ने जरूर अपनी रहमतें फरमाई। इसीलिए किसी शायर ने हजूर की सीरत में बड़ी अजीब बात की है, एक बड़ा अछूता अंदाज है, ख्याल है, तो वो ये कहता है कि जहां पड़ी नहीं नजर वहां है रात आज तक, कि जहां हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर नहीं पड़ी, ईमान नसीब

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: तो हजरत अली बड़े खुश होने गए, अल्लाह इससे बड़ी भी कुछ सआदत हो सकती है कि मुझे अल्लाह का नबी अपना भाई बना ले। अब देखें अंसार का कबाल और कुर्बानी और ईसार कह देना तो बड़ा आसान है। ये जज्बा, ये चीजें इस्लाम का सबक थी। अफसोस, सद अफसोस कि आज ये तमाम चीजें गैर कौमों ने अपना ली, हमारी सारी अच्छाइयां उन्होंने ले ली और अपनी सारी बुराइयां हमारे खाते में डाल। सहाबी जो भाई बने ना जी, वो अपने भाई मुहाजिर को लेके घर गया, उसने कहा देखो मेरा भाई, अल्लाह के नबी ने आपको मेरा भाई बना दिया। हम जो मां के पेट से पैदा होते हैं ना, वो तो सिर्फ यही है ना कि मां कहती है कि तुम भाई हो, बाप कहता है तुम भाई हो, पता नहीं औरत है, खयानत की हो, अल्लाह आलम क्या पता हो सकता है। लेकिन तुम्हारे भाई होने में तो कोई शुभ हो नहीं कि तुम्हें तो मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मेरा भाई बनाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए देखो मेरा घर है, इसको दो कमरे, एक तुम्हारा एक मेरा, अगर दो कमरे नहीं ऐसे घर है तो इसको तकसीम कर लेते हैं, आधा तुम्हारा आधा मेरा। मेरा बाग है, उसमें 100 खजूरे हैं, 50 तुम्हारी 50 मेरी। भाई जो सिर्फ कह देना तो आसान है ना किसी को भाई। वो एक लतीफा है ना शोरिश कश्मीरी, अल्लाह उसकी कब्र पर रहमत करे, बहुत बड़ा मुकर्रर भी था, खतीब भी था, अदीब भी था और बहुत बड़ा मुजाहिद भी था। तकरीबन 11 साल उसने अंग्रेजों की जेल काटी। तो वो एक दफा भुट्टो साहब से झगड़ा हुआ तो बाद में सुलह हो गई, कुछ लोगों ने दरमियान में पढ़ के सुलह करा दी। तो भुट्टो साहब उसके पास आ गए उसके घर में, और उसकी ये कमजोरी थी शोरिश की कि कोई आदमी उसके घर पे चल के आ जाए तो बस बात खत्म, फिर सारे झगड़े बगड़े। तो भुट्टो साहब आ गए, भुट्टो साहब किसी ने बता दिया कि भाई ये बड़ा जिद्दी आदमी है, माना तो ये अंग्रेजों की जेल से भी नहीं, तो तुम्हारी सख्तियों से कब मान जाएगा ये, इसका एक ही कमजोरी है, इसके घर चले जाओ बस खलास, सलाम वालेकुम, उसके बाद ये तुम्हारी मुखालफत छोड़ देगा। वो चुप करके घर आ गया, सुलह हो गई। जब सुलह हो गई तो भुट्टो साहब ने हंसते हुए कहा कि सुरेश साहब, आज के बाद आप मुझे अपना भाई समझें, आप मुझे एज ए PM बात ना किया करें, मुझे PM समझ के आप फोन ना किया करें, बल्कि आप मुझे अपना भाई समझें। तो सुरेश ने फौरन कहा कि हाँ मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे डर है कि कहीं आप यूसुफ के भाई ना। उनने कहा डर है मुझे, यूसुफ के भी तो भाई थे ना जिन्हें कुएं में डाला था। तो उन्होंने कहा भाई तो आप बन रहे हैं, लेकिन मैं ख्याल रखूंगा बहरहाल फिर भी कि आप मेरे वो यूसुफ वाले भाई तो नहीं है। तो बाहर सूरत कहने का मकसद यह था कि भाई का लफ्ज कह देना तो बहुत आसान, लेकिन उस पर अमलन प्रैक्टिकल तौर पे अमल करना कि भाई बन के दिखाना। उन्होंने कहा ये अच्छा, इतना इससे बड़ा कमाल ये है, एक साहब ने कहा देखो भाई मेरी दो बीवियां हैं, तुम मेरे भाई हो, तो मैं एक बीवी को तलाक दे देता हूं, लेकिन तुम इन दो को पहले देख लो, इनमें से तुझे कौन सी पसंद है, जो तुझे पसंद हो मैं तलाक दे देता हूं, इद्दत गुजर जाए तुम शादी कर लो। ये अंसार का कमाल था। और आगे भी तो फिर मुहाजरीन थे ना, हमारी तरह तो नहीं थे ना, हमारी तरह होते तो कहते यार बड़ी अच्छी बात है, ठीक है आदमी खुद अपनी बीवी देना चाहते तो क्या हर्ज है, खुशी से ही दे रहा है ना, हमें तो कोई ना भी दे तो देख लेते हैं, वो तो वैसे देने पर राजी हुआ हुआ है, हम तो वैसे भी तलाकें ले लेते हैं, तावीज कर लेते हैं, सहर कर लेते हैं, जादू कर लेते हैं। इसीलिए मैं तो हमेशा तकरीरों में भी कहा करता हूं कि अपने घर में कभी पीर या मौलवी को मेहमान न रखा करो, और हर आदमी को रख लिया करो, इन दो लोगों से जरूर बचा करो। कई लोग मुझसे नाराज हैं, वो कहते हैं आप मौलवियों की तौहीन करते हैं, तौहीन समझें कुछ समझें। एक तो मौलवियों को आदत होती है मुताला करने की, किताबें पढ़ने की, स्टडी बड़ी करते हैं, बतन देखा, हाशिया देखा, शरा देखी, एक एक लफ्ज देखा, इसी तरह इनको पाऊं भी किसी औरत का नजर आ जाए तो ये सर तक पहुंच जाए, ये मुताला शुरू कर देते, आदत होती। और दूसरी बात ये होती है कि ये गरीब भूखे होते हैं, इनको कुछ देखा हुआ नहीं होता ना, तो भूखे आदमी से हर किस्म के जुर्म की तवक्को हो सकती, ایک گناہگار آدمی نے تو سینکڑوں عورتیں دیکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس کا دل بھرا ہوا ہوتا ہے، اس نے کیا گناہ کر رہا. تو یہ مقام تھا صحابہ کا کہ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا دیکھو انصاریوں بات سنو، تم نے اپنے بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا، لا ننسا فضلکم، ہم تمہارا احسان کبھی نہیں بھول سکتے، لیکن خدا کے لیے ایک بھائی نے کہا کہ میرے بھائی دلونی لسوک، مجھے ایک رسی دے دو، ایک کلہاڑی دے دو، اور مجھے بتلا دو کہ لکڑیاں کہاں آتی ہیں، کہاں بکتی ہیں، جزاکم اللہ خیرا، میں لکڑیاں بیچ کے کھانا کھا لوں گا، میں بھی کسی کے دروازے پہ پڑ کے اس کے لیے بوجھ بننا نہیں چاہتا. مہمان ہوتا ہے 3 دن، اس کے بعد کیا مہمان ہے بھائی، پھر تو بلائے جان ہے. تو اب اس مواخات کے بعد پھر حضور نے ایک حکم جاری کیا، آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد قریش کو مدینہ منورہ میں کوئی پناہ نہیں دے گا، کسی کے وہ جیران نہیں بن سکتے، جیوار نہیں بن سکتے کہ کل کو کوئی قریشی آ جائے مدینہ منورہ میں اور ایک آدمی کہہ دے کہ ہاں جی میرا دوست ہے، میں نے پناہ دے دی ہے نا، خبردار مشرک کو اب کوئی پناہ نہیں دے گا. اور دوسرا حضور نے حکم جاری کیا کہ اب کسی غیر ملک سے یا غیر قوموں سے جو معاہدے ہوں گے وہ صرف محمد الرسول اللہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم، اب کسی یہودی کو یہ حق نہیں، اب کسی کعب ابن الاشرف کو، بنو قریظہ کو، بنو نذیر کو، بنی قینقاع کو، ان کے سرداروں کو کوئی حق نہیں، اب یہ حق صرف اسلام کا ہے. اگر کسی قوم سے معاہدہ ہوگا، عہود ہوں گے، مواثیق ہوں گے، معاہدات ہوں گے، تو صرف ہم کریں گے اور کوئی نہیں کرے گا. اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے نماز کا حکم، کیونکہ یاد رکھیں نماز میں کئی ادوار گزرے ہیں، جو نماز ہم پڑھتے ہیں، جو اہم عبادات، جو صلہ ہیں بین العبد و بین الرب، اس پہ کئی ادوار گزرے ہیں. پہلے زمانے میں صحابہ نماز پڑھتے تھے لیکن نماز فرض نہیں تھی، یعنی ابتدا اسلام میں مکے میں حضور بھی نماز پڑھتے تھے، صحابہ بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن نماز فرض کوئی نہیں تھی، اپنی منشے سے کسی نے پڑھ لی، کسی نے نہ پڑھی. پھر سب سے پہلے فرض ہوئی نماز کون سی؟ یہ 5 نمازیں نہیں، صرف تہجد. تہجد رات کی نماز فرض ہوئی حضور پر بھی اور صحابہ پر بھی.

कैसे खिड़ते हैं, जैसे दुनिया के हमारे आजकल 14वीं सदी के मजनू होते हैं ना, किसी को देखने देखा कैसे खिड़ते हैं बेचारे, माशाल्लाह बड़ा लंबा सफर करके इधर से उधर से आएंगे कि नजर पड़ जाए, हो सकता है वो अपनी मां हो बहन हो, फिर शर्मिंदा होकर पीछे मुड़ते हैं बेचारे, खड़े हो जाते हैं ना कॉलेज के बाहर, सड़कों के बाहर, स्कूलों के बाहर। माशाल्लाह हमारे आजकल के जी 21वीं सदी के मजनू है, अभी पढ़ा नहीं 21 सदी के मजनू ने कितने बंदे मार डाले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह पाक रहमत, वो तो काफिर थे चलो कोई हो, लेकिन हादसा कितना बड़ा है, हम तो अकल पे कह रहे हैं, अकल पे रो रहे हैं, वरना काफिर पे हमने क्या इन्ना लिल्लाह पढ़ ली। बात हादसे की हो रही है कि बेटा हो और झगड़ा क्या है एक औरत जो अखबारों में आया, हकीकत अल्लाह को है। तो बहरहाल मेरे कहने का मकसद यह था कि बात को समझें कि अरबाब हल्लो अकल, एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हुआ खलीफा बनाने का, याद रख लें कि जो पहला खलीफा है वो खुद किसी को नामजद कर दे कि भी मेरे बाद फला खलीफा हो, और उम्मत मान ले यानी एतराज ना करे, तो वो भी खिलाफत पक्की हो। तीसरा तरीका यह है कि खलीफा एक शूरा, एक कमेटी बना देता है, 5 आदमी की, 6 आदमी की, 10 आदमी की, 20 आदमी की, 100 आदमी की, वो कमेटी भाई चुन लेंगे इसको बनाना है, तो वो जिसको चुन लेंगे वो भी खलीफा। और एक तरीका यह होता है कि ना हर बाबे हल्लो अकद है, ना पहले खलीफे ने चुना है, ना उसको किसी कमेटी ने मुंतखब किया है, लेकिन हालात ऐसे पैदा हुए कि वो कुर्सी पर आ गया और उम्मत ने एतराज भी नहीं किया, तो उसको भी खलीफा कहा जाएगा और उसकी इताअत की जाएगी। और इसी तरह अब एक बात याद रख रहे हैं कि खिलाफत है या बादशाहत है, जो कुर्सी पे आ गया हमारा वली बन गया, उसकी इताअत हर हाल में लाजमी हो, यस्मे हुआ की हर हाल में, हाँ इल्ला अय्यकूना कुफरन बब्बाहन, हाँ कोई ऐसी बात हो नऊज़ बिल्लाह वो कहे कि नमाज छोड़ दो, यानी कुफरे बब्बाह का कोई हुक्म दे, या कहे कि सारे मुसलमान रहो नऊज़ बिल्लाह काफिर बन जाओ, यानी अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, फिर तो नहीं, क्योंकि किसी मासियत में तो हम इताअत नहीं करेंगे, वरना हर मामले में चाहे जान माल अपना नुकसान होता है हो जाए, लेकिन अमीर की वली अल अमर की इताअत जो है हर हाल में ना हो जाए नुकसान होने दो, क्योंकि उस इताअत न करने में जो फितना है वो तो पूरे आलम इस्लाम को तबाह कर देगा। अब ये चार तरीके बन गए। अब इसी से हमें ये अंदाज भी हो गया होगा, आपको बात समझ आ गई होगी इंशाअल्लाह, कि अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक ये जरूरी नहीं होता कि अल्लाह के नबी की खिलाफत का हुक्म कुरान में हो, या खिलाफत जो है मनसूस मिनल्ला हो या मनसूस हो अला लिसान रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हजूर जाती तौर पर हुक्म देके इसको बनाओ, अहले सुन्नत के नजदीक ये जरूरी नहीं। हाँ अहले सुन्नत के नजदीक इतना है कि हम हुजूर के तआमुल को देखेंगे, आपके इशारात को देखेंगे, आपके फरमूदात को देखेंगे, उसी रोशनी में हमें अंदाजा हो जाएगा कि खलीफा कौन कौन होगा, वरना शरी हुक्म नहीं होगा। और रवाफिज के नजदीक ये जरूरी है, वो कहते हैं नहीं, जैसे नबी अल्लाह की तरफ से मनसूस है, इमामत जो है वो भी मनसूस मिन अल्लाह है, लेकिन लुत्फ की बात ये है कि एक आयत भी कुरान में बेचारे नहीं दिखा सकते कि भी कौन सी आयत है जो उतरी हो के फलां को इमाम बनाओ, एक आयत भी नहीं, दावा ही बड़ा है उनका कि भाई बिल्कुल जी इमामत भी मनसूस, लेकिन भाई मनसूस जो हो कोई कुरान का हुक्म, कोई हदीस सही गैर मुआरिज, वो फिर बहुत ज्यादा भी बेचारे इधर उधर से दौड़ लगाए ना, फिर एक बहाना बना लेते हैं, वो कहते हैं जी ये नऊज बिल्ला कुरान ही मुकम्मल नहीं। चल तो जब कुरान ही मुकम्मल न रहा तो पहले ईमान रहा, जब ईमान नहीं रहा बाकी झगड़े में फिर हम क्यों पड़े, हम आपके साथ बहस ही क्यों करें, तो मसला ही खत्म हो गया। उन्होंने कहा अच्छा जी क्यों मुकम्मल नहीं, उन्होंने कहा असल बात ये है ना कि हुजूर के बाद वो 3 सहाबा ने कुरान जमा किया था ना, तो जो जो बातें उनके हक में थी वो तो रहने दी, और जो बातें हजरत अली और हजरत अहले बैत के हक में थी वो गिरा दी, और कुछ ये था कि कोई लिखा हुआ था तो कहते हैं बकरी खा गई, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह सबकी हिदायत के फैसले फरमाए, वो भी क्या करें, उनके दिमाग में यही बातें बिठाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, कहां जाए बेचारे, जब उनके सामने हक की रोशनी आती है तो फिर वो भी समझते।
اب ہمارے نزدیک یہ نہیں، ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں بھی اشارہ فرمایا اور اللہ کے نبی نے بھی اشارات فرمائے، اب ان میں سے یہ آیت مبارک ہے جس کو کہتے ہیں آیت استخلاف۔

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिरादरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अजीज नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व ताला की इनायत व करम से हम फजाइल सहाबा, मनाकिब सहाबा और असहाबे रसूल के खिलाफ जो मताइन हैं उनके जवाबात बज़िमन खुलफाए राशिदीन रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के दुरूस में अल्लाह की तौफीक से बातें कर रहे हैं, सुन रहे हैं। और चूंकि खुलफाए राशिदीन की अजमत का बयान और खुलफाए राशिदीन की फजीलत का बयान तब ही समझ आएगा जब पहले मकाम सहाबा समझ आए। अगर खुदा ना खास्ता मकाम सहाबा ही समझ ना आए तो फिर किसी खलीफा राशिद के बारे में समझने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी मिसाल यूं समझ लें कि मसलन अगर आप इब्तदाई जमात ही ना पढ़ें, पहली जमात ही ना पढ़ें, तो फिर दूसरी जमात पढ़ने का किताबें जो हैं कैसे समझ आएंगी? आखिर बुनियाद तो बुनियाद। और फिर सबसे बड़ी बात जो है वो मसला है सहाबियत का। याद रख, सहाबी का माना और तारीफ जैसे आप पढ़ चुके हैं कि जिसको हुजूर की सोहबत ईमान से नसीब हो और मुख्तसरन ईमान पे मौका। तो अब इसी से थोड़ा सा अंदाजा लगा लें कि अहले बैत हैं, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले हैं, हुजूर की औलाद हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनात हैं, रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिन अजमईन। लेकिन सबसे पहले मरहला आएगा सहाबियत। क्या माना? अब नूह अलैहिस्सलाम का बेटा है तो उसके अहल होने में कोई शक है भाई? उसके अहल होने में, उसके अहले बैत के फर्द होने में किसी को यानी कोई अकल भी शक नहीं कर सकता कि बेटे से बड़ा अहल कौन होगा। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मुकद्दस में सरी अल्फाज मुबारक में नफी कर दी, फरमाया इन्नहु लैस मिन अहले। अल्लाह का नबी कहता है इन्ना बनी कि या अल्लाह मेरा बेटा है, इन्ना मुअक्कद कलाम है, इब्नी निस्बत है या की इन नबनी। फिर जब नबनी कह दिया था मेरा बेटा है तो बात खत्म हो गई। लेकिन और फिर अल्लाह तो सब जानते हैं, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम अपनी बेचारगी के वक्त में, देखिए ना इंसान जब या तो कोई खुशी का वक्त हो तो फिर भी बात तफसील से करता है, और या फिर कोई गमी का वक्त हो तो फिर भी आदमी बात तफसील से कहता है। देखे ना मूसा अलैहिस्सलाम का एक खुशी का वक्त था ना कि अल्लाह कलाम फरमा रहे हैं बगैर किसी मलक के वास्ते के कलाम फरमा रहे हैं, और कितना बड़ा करम है कि फरमाते हैं वमा दिल कभी यमीन कया मूसा। मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे हाथ में, अल्लाह तो जानते हैं कि हाथ में क्या है। जब नवाजने पे आए तो फिर वो बातें भी पूछ ली जाती हैं, जानते हैं। काल ही असा या

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: सबसे पहले हुजूर की खिदमत में जाके रिक्वेस्ट की जाए कि हजूर मेहरबानी फरमाए इफ्तिताह तो आप कर दें, पहली पहली नमाज मेहरबानी करके आप पढ़ा दें, आपके कदम मुबारक आ जाएंगे तो हमारी तो सुभान अल्लाह ईद हो जाएगी। हजूर ने भी कह दिया ठीक है, मस्जिद जो बना रहे हैं तो अच्छा काम कर रहे। अब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को देखो ना जी, ये हमारे बाल फिरा के बादरा कह देते हैं ना जी, सहाबा ने उज़बिल्लाह मुनाफिक हो गए थे, पैसे के लिए साथ लगे हुए थे, इक्तदार के लिए साथ लगे हुए थे, हजूर पाक को आपकी इताअत नहीं फरमाते थे। अब देखिए एक वाकया हुआ है, तो क्या अल्लाह ने अपने नबी पे खोल दिया कि उसको रात रहने दिया कि वल्लज़ीन तखज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ्रन व तफ़रीकन बैनल मुमिनीन। अल्लाह ने फरमा दिया कि मेरा मदनी, जिन लोगों ने ये मस्जिद इदरार बनाई है ना, ये अल्लाह के साथ कुफर करने वाले मुसलमानों को लड़ाने के लिए तो मरकज बनाया है उन्होंने। और अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत कर दी कि मेरा महबूब इनकी मस्जिद में कभी कदम न रखना। मेरे महबूब ये तो मुनाफिक है, ये तो मस्जिद इदरार है, ये तो जाहिरी कलमे पढ़ने वाले लोग हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने खुद बनवा दिया कि वाला यहलिफुन्ना इन अरदना इल्लल हुस्ना, और ये कसमें खा दिए कि मेरा महबूब हमारा मकसद नेकी है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: और दरवाजा बंद करके अब काफी देर हो गई। बाप खुश है कि जनाब बेटा तो आज माशाल्लाह, आज शुक्र है, आज अबू बकर बात मान गया और इतना देर अंदर इबादत कर रहा। ये पता नहीं कि उसने तो तुम्हारे खुदा का सत्यानाश कर दिया। थोड़ी देर, जब काफी देर के बाद आए, दरवाजा खोला, अंदर गए, देखा तो खुदा टूटा पड़ा गुस्से में, आग बगो। अब देखो, यानी इसके बाद भी हिदायत नहीं मिलती। आंखों से देख चुके हैं कि जिसको मैं खुदा बनाए हुए हूँ, इलाह बनाया हुआ है, मैंने काबिल एहतराम बनाया हुआ है, जिसको मैं मसा करता हूँ, तबर्रुक पकड़ता हूँ, जिसके आगे खड़े होकर मैं हाथ बांध के, क्योंकि ये अल्लाह के महबूबों की शक्ल में है और ये देवताओं की शक्ल में है, वो टूटा हुआ है। ये नहीं समझते कि जो अपने आप को नहीं बचा सका वो कैसे अल्लाह का मुकर्रब और अल्लाह का बंदा हो सकता है, अल्लाह के करीब हो सकता है। नहीं, अबू बकर तोड़ने वाले पे गुस्सा है, यहाँ अकीदा समझ, अपने अकल पे गुस्सा नहीं आ रहा। आज भी आप किसी को कहें भी कब्र पे सजदा न करो, कहेगा वाबी हो ना, यानी तुम पे गुस्सा है, उसको अपने अकल पे कोई मतलब नहीं कि यार मैं अल्लाह का घर छोड़ के गैर अल्लाह के आगे सजदा कर रहा हूं। वो इस गलती को समझने के लिए तैयार ही नहीं। वो कहेगा हाँ तुम वहाबी हो, तुम मुझे रोकते हो, तुम्हें क्या पता, इबादत का सीधा अलग होता है, तादीम वाला सीधा अलग होता है। हम थोड़ा इबादत कर रहे हैं, हम तो तादीम कर रहे हैं। भई ये तादीम तुमने 1400 साल के बाद समझी है, सहाबा को भी समझ नहीं आई, आले बहते रसूल को भी समझ नहीं आई, अंबिया अलैहिम सलाम को भी समझ नहीं आई। तो खैर जनाब, अबू बकर के अब्बा जो आए गुस्से में और खौलते हुए गुस्से में और कहा कि ऐना अबी बकरिन, ऐना अबी बकरिन। तो माँ ने पूछा अबू बकर की, मैंने क्या बात है, उन्होंने कहा क्या बात है, उसने जाके आज ये ज्यादती की मंदिर में गया और मेरे देवता को तोड़ा है। तो आपकी अम्मा ने, माँ तो माँ ही होती है ना आखिर, लेकिन अबू बकर की अम्मा ने देखा कि आज अबू बकर का अब्बा जोश में, कहा अभी कुहाफा एक बात सुनो, अबू बकर को कुछ न कहे। क्यों? उन्होंने कहा इन इबनी हाजा लहू शान, मेरा ये बेटा शान वाला बेटा है। उसने कहा कैसे, तुम्हें कैसे पता है? तो बीबी ने कहा बात सुनो, अभी कुहाफा जब मैं हामला थी, अभी बकर मेरे पेट में थे, मैं फलाम मक्के की वादी से गुजर रही थी।